0: ఇస్లామీ తారిఖ్ల తెరకొరవే దతురు
1: ముఖద్దస్ తంతన ఇస్లామీ తౌసీబ్ బినా కురుంగా ముహిమ్ దౌరింగ దా కుఫావా సమాంవి తంతనుగె వాహకత
2: కమం బల్కిస్ కే అస్తు రస్కం ఉతి కొంగ్ సరహద్ దెక్యాతో దెనిగన్నం ఆర్కియాలజిస్టుం వరబ్బొడు సమాకమ
0: రత్త బినా కురిగత ఇల్మం హివర్ది బింతౌకా ఇల్మం హిత్త ఫరాదిగ
1: కురి పోషి
3: కొమే హోమ దోహే కే హెందును అగ్గడి తిరియు
1: రిపీట్ అంగర్ దోగి విందురు ఎకే జహర్ అది బుద దోగిరి అగ్గడి తిరియు एंगा सतरस्ते के साल इस न्यू किलोहर्ट्स मीडियम बेव आदि अध्ययनों में किलोहर्ट्स एफएम बैंड
3: इंतजार कर दूँगा
4: मैं और गड़ी अगड़ी हाथा विस मिनट में दिवेहराज जेगड़ो के कुरें हुए प्रोग्राम तक हमें हाय सांभा लाना मैं तो अर्गुमेंगे प्रोग्राम तक हमें चिफ़ागो तो अगड़ी तेरी हो अर्गुमें प्रोग्राम में देंगे निस्ते ने ए कुदरत के अजाब तक मैं अर्गुमें तंग को ले कोरिंगे निस्ती फोई प्रोग्राम है दें ইবে দায় নমানি দ্বেহ বহু খবর রাজ্য দুনিয়া মশ ফাকুল খবর তর গুমে মেয়ে দেশ কেনেস দে না নোয়াগড়ি ফানে রাগর মেন কমে তো কেস কেনেস দে প্রোগ্রাম আদকে রাজ্য মে দেশ কুরিয়া দানে নোয়াগড়ি ফানে রাম ফেশিকিং হামা তিবে ফুনা মে প্রোগ্রাম অড সালব গে ফুরসত লিব গে দানে দে রাজ্য গে কি হিসাব গ হেঙ্গা তফাত হে কেত গে মালুমাত তিবে ফুন হিসাব কল গে ফুরসত মে প্রোগ্রাম লিব গে দান দেগর তিরি হুকে গেনেস দে নি তারি হুকে তারিখ গে সফাত কো मैं सर्गुमेंटांग को ले कुरिंग के निश्चित फॉय प्रोग्राम है। एक आर्च है मैं देश वर्णन वाली देवी ही बहुम खबर राज्य दुनिया में शोभा को ले खबर तो सर्गुमेंट के निश्चित ना दे मैं तो एक आर्च के फने राग के निश्चित नहीं हंगारा ये फहो सर्गुमेंट प्रोग्राम तक को ले दार में दुनिया मात वक्त गे बंगे आ बंगे दुआ आदि के तो करवा मिस के निश्चित ना मैं गे में दुनिया मात वक्त वाने बाहर गड़े नौ मिनट का
5: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರುವಾದೆ
6: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುನ್ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ಕುವಾದೆ
5: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
6: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಡು
5: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
6: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
5: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुर कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: हफ्ता के वाहक मिसल सिलाया अनेक कावेस मुलिंग आ बड़े
4: उड़मती साफ हांदवर दे रहे के मुली गुण दुष्का वा दोंवेली गंडा हांदवर के हिग्याम आली एडिफावायरो दोंवेली गंडो हीवनी रिही के साले फितर फावा है ने
5: सीमा मेरे सीमा की तमिल हो मैं नमस आरे इंतजार कर रहा
6: मुफीदा मोहम्मद के वाहक शायना शायना
7: मेरे दिन में हेला थी भी आरे न तगुरी रु देंदो आर इन गेगने थे या अब तो थी बेरनी माशादी माने से ही गोवाला कन्यागी
6: नादिरु के दिरी उल मा देववाने कीने पा
4: वारं उफावान अदे नुलबुन नमा वार देरा विस्वान
2: हफ्तागे वाहक
3: कोमे आदि तो दो है गेमेंदुर कोरी एकार गड़ी फनेरा
6: अधि हमेरे दिया गड़ी तिरी हूँ
3: अधि अंगार दो गेरे मेंदम बार गड़ी तिरी हूँ
6: एं खासतर स्टेक 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव अधि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
3: दिवे ही राज्य गाडो
6: दिवे ही राज्य
4: गाडो एवे ने नाला एरी हूँ ताहम मले नुकुरा ए उन्दकु तसव्वुर विस नुकुरेवे एकमको एकुलना एलोबी ए जज्बाता ए हुसासु मिही फुरी पांडो वणी
6: मिही तुगे लोई पेती
4: कोमे बुददो है गेमेंदुर कुरी एगार गड़ी फनरे रिपीट हम एरे दिहा गड़ी तिरी हो
8: इन हां 17.9 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव अदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
6: दिवहिराज्चे के आडू
8: इंतिजार कुगा
6: मिहितुगे लोई पेती
7: राज्चे के कोम्मे हिसाबे गहुरिगें विस एविस अगे देखुम कानुला PSM के चेरलता फोनुं अडू हाला बलालुम फसेह गोते
9: PSM एया
8: दिवहिराज्चे के आडा दीनु के आडू अदि दिवहि FM विस अडू हाल वेने
7: TVM, YesTV अदि PSM न्यूसेस बलालुमे
9: PSM एया
8: iOS adi Android phone takun download kuravene
7: PSM ya
8: avaha phone download kurava

हेलो। हाँ जी माँ। हाँ एक आ रहे बोले में एक कुत्ती बुला हाँ की नती है बुढ़े कहते खुराने दो ठीक है मुई मनोने तो हर में बुनानी एक कम कुत्ती नोना से तक कम होना रहने दो हाँ माँ बुढ़े कहते ये नोने ಮಾಧಮ ಎಂದು ತಯಾರವಾಗಿ ಹುಣ್ಣಾತಿ ಓಕೆ ಲವ್ ಯು ಟೂ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदित्य राज जगड़गे मैं तेरना बरह हिक्का बरह उफावर वक्त कुल कह दे दिवी काउ में इखलास तेरे कमाए की एक ही रंग रंग की खिदमत कर बे मैं हमें तेरे नहीं तो कि है दुआ तेरे रद्द कर दिवी काउ में अगर खिदमत कर वफा इम्मा ehun terina argumenge meha khidmat terina hakku shukura da kura ade qom bina kurma ejje nuhan bura ufulle bi kom khidmat tereki faad veri fun veri hunar veri mestirenge to mestirin program ek mefta ke tefna mi patta kurani halgun rukia ade mestirin program algun me ham mefta ke sirat kurwe ke akada kam gadin har kurie kendane himat be flunge swal taka ekik mefta sa program kurie kendane kuder kulik terani kasalun batta kolana

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস করবা ফাবে আসালুল্লাহ আল জান্নাত ওয়া আউযু বিহি মিনান নার মানে স্বর্গ দেব বং এদিমিয়ালা দন্নবানি হামাই কানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আশ আদি নরকা গে আযাব সালাম বুমং এদি দন্নবানি বেস হামাই কানি একালাং গাশ
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ತಿಂಗಡಿ ತೆತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಸುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: क्रॉस करने की कोशिश मत करो, समझे?
1: हर चीज करो, लिमिट क्या, लेकिन प्यार लिमिट के बहुत बाहर।
2: नहीं बनना है मुझे जिया का पिया। डूंगरपुर मैन आर नॉट कट आउट फॉर मैरिज। आज तक मेरी फैमिली किसी ने शादी नहीं की, डिड यू नो दैट?
3: यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में, जहाँ रेत देखते हो आप लोग लेट जाते हो।
4: Hi, I'm Anjali.
5: I'm married. I mean, Vinay Malhotra.
6: आज जरूर करूंगा, छोडूंगा नहीं।
1: Happy anniversary.
0: पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया।
1: ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अब जो गिफ्ट मैं चाहूंगा वो देना पड़ेगा।
0: आशु नो बदमाशी।

0: आई नीड अ वीजा टू गेट टू उदयपुर.
1: आपको उदयपुर जाना है, हम आपको उदयपुर ले जा रहे हैं. अब इस बीच में आपको वीर जाला देखनी.
2: Yes. You know I love you, right?
3: Yes. मैं शादी नहीं कर सकता.
4: रे बावली, कौन क्या देखेगा? आज तक मन ने कुछ ना देखा. प्लीज आज ना रो.
0: कौन है ये बाबू?
5: राहुल, कामिनी के बचपन का प्यार.
2: हमारा घर जैसा भी हो, हम साथ मिलकर उसे खूबसूरत बनाएंगे. लेकिन अगर तुम साथ ना रही तो ना मेरा आज है ना आने वाला कल.

0: he marries someone else, I'll kill myself.
1: इसकी जुबान नहीं समझता तो क्या गया? इसकी आंखों की भाषा तो समझता हूँ। इसे कह दो कि राजू इसको इसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा।
2: शादी के 15 साल में तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ खो दिया है? वो प्यार, वो एहसास, वो एक्साइटमेंट, कहाँ है वो सब? कहाँ है सीमा?
3: शायद वक्त बदल गया विनय, पर मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ।
4: और अगर आज राहुल कहे कामनी आई लव यू,
5: शिवेन, प्यार हर वक्त साथ रहता है, क्योंकि प्यार वक्त से नहीं, उससे किया जाता है जिसके साथ वक्त गुजारते हैं।
6: सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिया।

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ूं
3: दिवे राज्य के मुनिफो ही फिल्म के दायरा के फन्ना नो नायक
4: फाड़न नो ने न तिकेरी की तिकेरी फाड़न नो ने ये मुले बिदाय रही लाफ में
2: एमए फाउ के रिलीज तक
5: कदे कुछ मुने न कारी का माइज बुन्ये अहरम बस भरस सोरी है
2: ಅರಮೂಲ ತರಿಂಗೆ ವಾಹಕ ತಂಗವ ಟಸ್ಲಾ
6: ಮನ ಮಮ್ಮಿ ಮುಳಿ ಹಿಣ್ಣವರ ಮಶೂರು ದಿಲಿ
2: ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಒಮ್ಮೆ ಅಂಗಾರ ದೋಹೆಗೆರೆಗಂಟು ಎಗಾರ ಜಹಾಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಗುತು
7: එංහා 441 kHz medium wave 890 MHz FM band
8: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রাওয়া ফাবে ইন্নাকুম তাদউনা সামিআন করিবান ওয়া হুয়া মাআকুম মানে হামাকাশওয়ারুন তিয়াবামি হুন দুআ কদন্নওয়ানি আসওয়া ওয়ডিগমবা আদি কুত্তম ওয়ডিগমবা রাসকালাং গে শেফ একালাং গে ইলম ফুলাগম ওয়ডিগমবানি তিয়াবামি হুননা একুগে
1: ಮೀ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು